कभी शिकवा ना करेंगे ना आजमाएंगे, तुम जहां पाव रखोगे ये दिल बिछाएंगे। हम तुम्हारी वफा की दुनिया में प्यार ही प्यार लुट

0: K-pop. Keep the vibes interesting. This is Sangeet 106.1 FM. More than just music. This is us.
1: We control the vibe. You're locked on with Captain Candel and DJ Ian Shaw.
2: दोस्तों आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है।